0: अरे अरे अरे अरे अब तक न जाने कैसे जिया
1: कैसे जिया।
0: ऊपर से धूप ने और भी जलाया है, कोई छतरी है न साया है
1: न साया है।
2: अरे एक छतरी का सवाल है बाबा,